0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Faza 97.1 FM.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: eat.
1: It's commercial time.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए।
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
7: तुसी सुनदे पे हो, सुनदे पे हो अपनी दिलानी आवाज, दिलानी आवाज
8: 97.1
9: Hits.
10: Music never sounded better.
11: Fazan 97.1 FM.
12: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में।

0: तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
1: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.

0: We are playing Fazan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

कोई से तुमको देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रापता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 07968046444 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

0: with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
0: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
2: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Fazaa 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼
7: 97.1।
8: This is a public service announcement.
9: The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
7: 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर।

0: 669 मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
7: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0777-929-8484।

0: 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी, वाइब भी।
3: You are listening 97.1 FM.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG2 4LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM।

0: सबके दिल को छू लेगी।
1: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
2: फजा 97.1 FM।

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फिजा। आपका मेजबान आसिर खान एक बार फिर आपके साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अदाकारियों से खुश आमदीद कहते हुए, वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया, यानी एक सेगमेंट के बाद। और सेगमेंट था हमारा कि आज का हमारा फिजा आइडिया क्या है, और फिजा आइडिया में आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देखी कि मुझे जो फाइव वेज लगे उनमें से दो तरीके मैं आपके सामने रखता हूँ। कि एक जो है, जो वे नंबर फर्स्ट था, कि आपने सबसे पहले अपना डे प्लान करना है, और उसके बाद लास्ट वाला था जो कि कभी आपने अपने आप को पावरलेस नहीं समझना। बाकी जनाब आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये जो आइडियाज हमारे पास हैं, ये जो आज का जो टॉपिक है जिससे हम रिलेट हैं या हम लेके चल रहे हैं, कि दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया, बल्कि ये सोचो कि तुमने क्या बोया। अक्सर हम ये लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज हमारे पास कैश कितनी कलेक्ट हुई है, आज हमारे पास अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, आज मैंने नई गाड़ी ली, आज मैंने नई गाड़ी बुक की, आज मैंने मॉर्गेज किया, आज मैंने ग्रॉसरी की, ये हर चीज़ आपने देखनी। लेकिन एक डिफरेंट एंगल से सोचिए कि अगर आप ये सोचें कि आपने इसके हवाले से कम्युनिटी को या अपने बच्चों को या लोगों को क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या फ़ायदा दिया, तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग कि आपको पता चल जाएगा कि आप आज क्या बो रहे हैं। अगर आपने स्माइल पास की, सब लोगों से हंस के बात की, अपने दिन को एंजॉय किया, अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले ही खूबसूरत बना दिया, तो फिर सामीन ये आपने बोया है। अब रिग्रेट करें इस चीज़ को या भूल जाएं कि आप क्या पाने जा रहे हैं या आपने क्या पाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या बो रहे हैं, आप किस तरह के लोग डिवेलप कर रहे हैं सोसाइटी में। और जब लोग डिवेलप होते हैं ना सोसाइटी में, डिवेलपमेंट की तरफ सोसाइटी चलती है, तो सबसे जो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो आपके इन्वायरमेंट पे होता है। इन्वायरमेंट का कामयाब होना बेहद जरूरी है जनाब। कल ये हमारा टॉपिक रहेगा और डेफिनेटली रहेगा कि जनाब इन्वायरमेंट कैसे कामयाब होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष टिप्पणी, बहुत ज़्यादा राय, बहुत ज़्यादा फलसफी बनना नहीं चाहता। इन्जॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स जो मेरे पास हमेशा मौजूद रहते हैं आप लोगों के लिए। सुनिए ये ट्रैक्स कुछ समय के लिए, इन ट्रैक्स के उस पार एक से दो मिनट मेरी आपसे गपशप रहेगी। आप लोगों के जो जितने भी मैसेजेस हैं वो भी शामिल हुए, साथ साथ पढ़ भी रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है जब आप मैसेज करें तो अपना पोस्टल कोड और अपना नेम लाजमी बताया कीजिए, ताकि मैं अनाउंस कर सकूं। अब मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मैं पढ़ नहीं सका या मैं उनको बता नहीं पा रहा आपको। मेन रीज़न ये है कि आप अपना नाम मैंशन नहीं करते, आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सो स्टे ट्यून्ड विद फिजा 97.1 FM डैब, इंजॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स। ट्रैक्स के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात, होस्ट विल बी राइट बैक।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਬਾਤ, ਦਿਲਾਨੀ ਬਾਤ
7: 97.1
8: radio station for people who love music. 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अ वेरी ब्राइट एनर्जेटिक एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली लिसनर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा, वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग में। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। रेडियो फजा 97.1 FM, जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जी तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप मिलकर अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक, यानी अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा यादगार। जी तो लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है, आप अभी उठाइए फ़ोन 01157100971। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारे स्टूडियो द रेडियो फजा 97.1 FM का लाइव नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से हमसे अपने हालात शेयर कर सकते हैं, अपना नाम शेयर कर सकते हैं, कोई प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आपके माइंड में चल रहा है या कुछ करना है, करने का सोच रहे हैं, आज के क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, वो सभी बातें जो आप किसी और से नहीं लेकिन आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फ़ोन में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत सिंपल सा है, सो मैं आपको बताती चलती हूँ। आपने बस इतना सा करना है कि अपना फ़ोन उठाना है, अगर तो आप एप्पल यूज़र हो तो आप एप्पल स्टोर पर, नहीं तो एंड्रॉयड यूज़र्स आप जा सकते हैं गूगल स्टोर पर। आपने करना इतना है कि जाना है आपने एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पर, वहां जाकर आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का आइकन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। जी हाँ, ये है हमारे रेडियो फजा 97.1 FM की लाइव एप्लीकेशन। सो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप रहें हमारे साथ कनेक्टेड और आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहें।

लिसनर्स, ये थे वो सभी तरीके जिनसे हम आपसे और आप हमसे जुड़ सकते हैं. सो जुड़े रहिए, बंधे रहिए हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग, और हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहिए.

चलिए तो लिसनर्स, बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मगन होंगे, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही एक मुसलसल चलते हुए जस्तजू का है। हम लाइफ में कभी भी रुक नहीं सकते, हर वक्त हर समय हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। करना अगर हम ना भी करें तो हमें करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ इज़ अ नेम ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक दिन ऐसा आए कि जिससे ना आपको कोई काम ना करना पड़े और बस आप आराम सुकून से बैठे रहें। इट्स नॉट पॉसिबल। सो लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, हमें डेली बेसिस पर तगोदो करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। लेकिन मैं उन्हीं तमाम तर लोगों से ये चीज़ कहूँगी कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी का पहिया आगे कैसे चलेगा। सो जी, ज़िंदगी को आगे चलाना है, इसी तरह शो को भी आगे चलाना है। जैसा कि लिसनर्स, हमारे शो की परंपरा है कि हमारा कोई भी शो स्टार्ट होता है एक खूबसूरत से कोट ऑफ द डे से, ताकि शो के स्टार्टिंग में आपको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले और एक स्ट्रेंथ मिले कि जिससे आप अपने पूरे दिन को खूबसूरत, यादगार और अच्छा बना सकें। तो कुछ इसी तरह आज भी मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा ही खूबसूरत सा, शानदार सा कोट ऑफ द डे।

जी तो लिसनर्स, आज का कोड भी कुछ इसी तरह से है, यानी कि आज का कोड सुनने के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि आपको इससे अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ मिली है। सो बिना किसी देरी के आपसे आज का कोट ऑफ द डे शेयर करती हूँ। तो हमारा आज का कोट ऑफ द डे एक वेरी फेमस नॉवलिस्ट की बुक से लिया गया है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, लेकिन चलिए सुनते हैं पहले आज का कोट ऑफ द डे। सो हमारा आज का कोट ऑफ द डे कुछ यूँ है कि इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग।

चलिए इस खूबसूरत से बात को गहराई से समझते हैं, यानी कि आज का हमारा कोट ऑफ द डे ये बताता है कि सिर्फ हमारे ख्वाब की ताकत है जो ज़िंदगी को इतना दिलचस्प बना देती है। अगर हमारे पास कोई मकसद, कोई गोल या फिर कोई सपना ना हो तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो जाती है, ज़िंदगी का कोई मोटिव नहीं रहता और जीने का कोई मकसद भी बाकी नहीं रहता। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी खूबसूरत बने, हंसी बने, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि हमारा कोई गोल होना चाहिए, कोई एम्बिशन होना चाहिए लाइफ में।

वैसे भी लिसनर्स कहा जाता है कि ड्रीमिंग इज द स्टार्ट ऑफ डूइंग। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा ख्वाब यानी कि हमारा कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई मोटिव होता है जो हमें पुश करता है कि चलो उठो, हमने निकलना है, घर से बाहर जाना है, अपने मकसद की तरफ रवादवा होना है। यानी कि जो भी हमारा एक गोल होता है, हमारा एक मोटिव होता है, हम उसको माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट सर्वाइविंग, इट इज अबाउट लिविंग विद पर्पस। कहा जाता है कि जिन लोगों की जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता, वो लोग बेरंग से होते हैं, उनकी जिंदगी कलरलेस मतलब नहीं होती, बिल्कुल कलर ब्लाइंड होते हैं। उसके बरक्स वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, कोई पर्पस होता है, उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत कलरफुल होती है।

जी तो लिसनर्स, आप सोच रहे होंगे ये खूबसूरत सा कोट, ये खूबसूरत सी बात किस वेरी फेमस नॉवलिस्ट ने लिखी थी। सो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो बेसिकली ये द वेरी फेमस नॉवलिस्ट पोलो कोल्हो ने लिखी है अपनी किताब, अपनी मशहूर ज़माना किताब में।

उनकी वेरी फेमस बुक द अल्केमिस्ट हमें यही चीज सिखाती है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। अक्सर औकात होता है कि हम परेशानियों में फंस कर अपने ख्वाब भूल जाते हैं, लेकिन लिसनर्स, नेवर लेट योर फियर्स डिसाइड योर फ्यूचर। अपने ख्वाबों को अपनी ताकत बनाएं और आज का दिन अपने आप से, खुद से ये अहद करें कि आप जिंदगी में बिना किसी गोल के, बिना किसी पर्पस के, बिना किसी मोटिव के नहीं जिएंगे, क्योंकि जिंदगी नाम ही किसी गोल का, किसी मकसद का, किसी पर्पस का है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं है या आज तक आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि आपकी ज़िंदगी में कोई गोल होना चाहिए था, सो इट्स अ साइन फॉर यू ऑल ऑफ यू कि आज से आप इस बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी का एक मकसद तलाश करें।

जी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का हमारा कोट ऑफ द डे बहुत अच्छा लगा होगा और इस कोट ऑफ द डे से आपको जिंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया जाविया देखने को मिला होगा। सो तमाम तर लिसनर्स जिनका जिंदगी में कोई गोल नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि जो कहते हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो, तो उन्हीं तमाम तर लोगों के लिए हमारा आज का कोट ऑफ द डे है कि जस्ट गो विद द फ्लो, इट्स ओके, बट If you have ambition, if you have a goal in your life, then you become more powerful, you become more successful, you become more strengthful. So, इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करके रखना, और वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर किसी चीज़ को पाने की तमन्ना ही नहीं होगी तो फिर ज़िंदगी का मज़ा क्या है। सो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज के कोट ऑफ द डे पर अमल करें, और क्या अमल करना है कि आप सभी ने अपना एक अच्छा सा, एक प्यारा सा, एक खूबसूरत सा गोल सेट कर लेना है। तो ये तो लिसनर्स मेरा ख्याल है कि काफ़ी मोटिवेशनल बातें हो गई हैं, और भी गपशप तो होती रहेगी, लेकिन शो में एक मज़ेदार सा ट्रैक शामिल किया जाए ताकि तमाम तर लिसनर्स मेरी बातें सुन सुन के बोर ना हो जाएं, उन्हें साथ में थोड़ा म्यूज़िक मस्ती भी मिलता रहे। सो सुनते हैं ये मज़ेदार सा ट्रैक, ट्रैक के उस पार आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।

ऑल राइट लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय किया होगा। पर्सनली काफ़ी अच्छा ट्रैक था। मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट प्ले किया जाए क्योंकि डेली बेसिस पे मैं ज़रा डिफरेंट तरह के सॉन्ग्स प्ले करती हूँ। जी तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पर। तब तक के लिए आई एम योर होस्ट ज़ैनब फातिमा एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability

ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डिकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

तो लिसनर्स, जैसा कि हमने अपने शो के स्टार्ट पे बात की आज मोटिवेशन के बारे में कि आपको लाइफ में कोई ना कोई गोल ज़रूर परस्यू करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ खूबसूरत बने, हंसी बने, और इसके साथ साथ कि अगर आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं, तो आपके उस ज़िंदगी गुजारने का, दुनिया में आने का, आपकी एग्जिस्टेंस का कोई मोटिव, पर्पस और एम्बिशन होना चाहिए। चलो लिसनर, अब बात करेंगे उस चीज़ के बारे में जो कि हर घर का हिस्सा है, यानी कि खाना। खाने के बिना हर घर अधूरा है, और कुकिंग के बिना तो कोई घर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक अब तक हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, जितनी भी फीमेल लिसनर्स हैं, इस वक्त तक वो अपने घर की क्लीनिंग कंप्लीट कर चुकी होंगी, और द मेन थिंग दैट कम्स इन हर माइंड इज़ कि आज क्या पकाया जाए।

जिस तरह से ये चीज़ सोचना कि आपकी ज़िंदगी का एम्बिशन क्या होना चाहिए, तो ठीक उसी तरह से ये चीज़ सोचना कि आज करने में क्या बिताया जाए, ये भी आज खुद एक डिफ़िकल्ट सा टास्क होता है। सो आपकी इसे मुश्किल को मद्देनजर रखते हुए अपनी तमाम तर डिवाज के लिए मैं लाती हूँ रोज़ाना मज़ेदार मज़े की रेसिपीज, ऐसी रेसिपीज जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हों, सिंपल हों, क्विक हों, ताकि आप लोग जल्दी जल्दी उनको बनाएं और अपने घर वालों को ज़रूर अच्छे अच्छे टेस्ट का खाना खिलाएं। सो बेसिकली होते तो वही कॉमन बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आई थिंक हर घर में

मौजूद होते हैं, लेकिन बस उनको पकाने का बनाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जस्ट टू ऐड सम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर। होता है ना कि जब हम डेली बेसिस पर दाल सब्जी उस तरह की जो बेसिक सी रेसिपीज़ हैं उनको खाकर थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। सो इसीलिए मैं डेली बेसिस पर थोड़ा सा यूनिक फ्यूजन लेकर आती हूँ, ताकि आप अपने रोज़ाना के खानों से जो आप बोर हो चुके हैं उनसे ज़रा हट के ज़रा मुनफरिद कुछ अलग सा ट्राई करें, और लाते भी वही तमाम तरह रेसिपीज़ हों जिनको फीमेल के साथ साथ मेल हजरात भी बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक हैं। सो यू डोंट नीड सो मच एफर्ट टू पुट इन।

वैसे भी कहा जाता है कुकिंग इज एन एक्ट ऑफ लव मेड एडिबल. तो लिसनर्स आज के इस सेगमेंट में, इस मजेदार से सेगमेंट में लाई हूँ आपके लिए जो मैं आज का मेन कोर्स, वो है हमारे पास रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बोटी. एंड आई थिंक अब लिसनर सोच रहे होंगे कि जैसा कि इसका नाम इतना मुश्किल सा है तो इसको बनाते हुए भी हमें सो मच एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी. सो डोंट वरी, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा. जस्ट 20 to 25 मिनट्स में आपकी ये रेसिपी मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी. तो लिसनर्स जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल रेडी कर लें. अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो इर्द गिर्द आस पास आजू बाजू में देख लें. अगर आपके पास कोई डायरी है तो उसको उठा लें और फौरी तौर पर रेडी हो जाएं, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हमारी मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी के इंग्रेडिएंट्स, ताकि कुछ भी आपसे मिस डाउन ना हो जाए.

जी तो लिसनर्स, इस रेसिपी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं उसमें सबसे पहले हमें चाहिए चिकन 500 ग्राम बोनलेस क्यूब पीसेस। सेकेंडली हमें चाहिए दही 4 बड़े चम्मच। इसके साथ साथ हमें चाहिए थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, यानी कि आप 2 से 3 स्पून ले सकते हैं, और चाहिए हमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 स्पून,

साथ ही चाहिए हमें मक्खन, बटर या फिर ऑयल 2 चम्मच। इसके साथ साथ काजू का पेस्ट हम 1 चम्मच यूज करेंगे इस रेसिपी के अंदर। अब बारी आ जाती है उन तमाम तर मसाला जात की यानी कि स्पाइसेस की। तो आज की हमारी इस रेसिपी में कौन कौन से स्पाइसेस शामिल होने जा रहे हैं वो सभी आपसे शेयर करती हूँ। सब बेसिक तो ये स्पाइसेस हैं, लेकिन इन स्पाइसेस के बिना खाना अधूरा है। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि खाना दिखने में जितना अच्छा हो, चाहे जितना मर्जी प्रेजेंटेबल हो, लेकिन अगर उसके स्पाइस लेवल बैलेंस नहीं है तो वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हमें खाने का दिल नहीं करता, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों हो। सो प्रेजेंटेशन के साथ, ओवरऑल लुक के साथ स्पाइसेस का बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस रेसिपी में हमें चाहिए सबसे पहले जीरा पाउडर एंड गरम मसाला 1-1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, इसके साथ साथ नमक हसबे ज़रूरत और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद बिल्कुल बारीक पीसी हुई। जी तो मेरे लिसनर्स, आई थिंक आप सभी ये चीज सोच रहे होंगे कि मैं जितनी भी आपसे रेसिपीज शेयर करती हूँ उन सभी रेसिपीज पे मैं लाल मिर्च नहीं यूज करती। सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आई फील लाइक कि जो लाल मिर्च हैं वो हेल्थ के लिए ज़रा थोड़ी डेंजरस साइड पर चली जाती हैं, क्योंकि उनका अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू द काली मिर्च। सो इसीलिए मैं अपनी तमाम तरह रेसिपीज़ को ट्राई करती हूँ कि मैं उनको काली मिर्च में ट्राई करूँ। इससे ये होगा कि स्पाइस लेवल भी बैलेंस होगा, हेल्थ भी डैमेज नहीं होगी और आपको इक्वली फ्लेवरफुल खाना खाने को मिलेगा।

जी तो लिसनर्स, लगता है कि आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। सो चलते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, और ट्रैक के उस पार हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे बातचीत करेंगे। लेकिन सुनते हैं अभी ये सॉन्ग।

सी तो लिसनर्स, जैसा कि आप सभी से मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट तो नो डाउन इंग्रेडिएंट लिस्ट तो शेयर कर दी थी, चलिए अब चलते हैं इसके प्रोसीजर की जानिब कि किस तरह से आपने इस रेसिपी को बनाना है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है मैरिनेशन। इस स्टेप पे हम कुछ यूँ करेंगे कि एक बाउल में चिकन नहीं क्रीम, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, काजू का पेस्ट, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक, इन तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इस तरह से इसे मिक्स करेंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ना सिर्फ मैरिनेट हो जाए बल्कि ये जो तमाम जो स्पाइसेस हैं इनका टेस्ट भी चिकन के अंदर ऐड हो जाए। वैसे भी कहा जाता है कि मैरिनेशन इज़ द की ऑफ एनी डिश। सो जब भी आप कोई भी रेसिपी ट्राई करें, कुछ नया ट्राई करें या फिर कोई भी रेसिपी आप बनाएं, सो द फर्स्ट थिंग दैट कीप इन योर माइंड इज़ कि आपने उसको अच्छे से मैरिनेट करना है। ना सिर्फ मैरिनेट करना है, मैरिनेट करने के बाद मैरिनेशन को आपने कम अज़ कम 20-30 मिनट्स के लिए रखना है। वैसे अगर आप इसे ज़्यादा रखते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि इससे आपकी रेसिपी और ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप 20-25 मिनट भी रख सकते हैं।

0: अच्छा, सेकंड स्टेप में आपने करना कुछ यूँ है कि एक पैन में आपने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसको डाल लें, उसको अच्छे से गर्म कर लें, और गर्म करने के बाद जो आपका मैरिनेटेड चिकन है उसको आराम से उस पैन के अंदर आपने रख देना है। आपने आंच को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और आपने चिकन को दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है, यहाँ तक कि आपका जो चिकन है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाए, बिल्कुल जूसी बन जाए। अच्छा, मलाई बोटी को एक असली रेस्टोरेंट स्टाइल देने के लिए बीच में आपने एक फॉइल पेपर का इस्तेमाल करना है। फॉइल पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा आप रख लें, उसके ऊपर आपने क्या करना है देखता हुआ, यानी कि गरम गरम कोयला आपने रख देना है। इससे क्या होगा कि जो कोयले की फ्लेम है वो आपकी रेसिपी के अंदर ऐड हो जाएगी और उसका एक टेस्ट, उसका एक अरोमा वो आपको अलग से फील होगा, और यही वो इंग्रेडिएंट है जिससे आपको फील होगा कि आपकी जो मलाई बोटी है वो रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट कर रही है। वैसे भी द स्मोकी फ्लेवर टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो बस अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और टडा, आपकी रेसिपी हो गई तैयार। देखा आप सभी ने, कितनी सिंपल सी थी, बेसिक सी थी, और इस पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। एंड आई होप यू लाइक द रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बल्कि आज ही ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मलाई बोटी चिकन कैसा लगा। जी तो लिसनर्स, अभी वक्त हुआ चलता है शो में एक दिन कमर्शियल ब्रेक का। सो वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा ब्रेक पर जाने का, लेकिन चूंकि आपके और मेरे बीच एक दिन कमर्शियल ब्रेक हाई हो चुका है, सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जाने और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए रेडियो फजा 97.1 FM को सुनते रहिए।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
2: Where is AMH solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
3: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: Thank you. Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आवाज की दुनिया में हम आपके साथ रिश्तों के सिलसिले बरकरार रखें हमारे साथ जुड़कर सुनिए हमें रोजाना सिर्फ फजा 97.1 FM पर

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM। रेडियो फजा 97.1 FM जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सो डियर लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलते हुए तकरीबन मुझे और आपको हो चुके हैं साथ में एक घंटा। तो बिल्कुल लिसनर्स, कुछ इसी तरह से होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, सो आपको कभी भी वक्त का एहसास नहीं होता और चंद ही मिनट आपको पता ही नहीं चलता कि कब घंटों में बदल जाते हैं। ये तब मुमकिन होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो, या फिर आपने दूसरे शख्स पे बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टमेंट की हो। तो लिसनर्स, मैं भी कुछ इसी तरह से चाहती हूँ कि आपका और मेरा साथ भी हो कुछ ऐसा ही, यानी कि अगर हम फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। इसीलिए मैं अपने तमाम तरह लिसनर्स से कहती हूँ कि आप 01157100971 इस नंबर के जरिए अपने ख्यालात, अपने पैगाम और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके माइंड में चल रही है, कुछ ऐसा जो आपको बॉदर कर रहा है, मुझसे शेयर करिए। क्योंकि रेडियो फजा 97.1 FM का मेन मोटिव, मेन मकसद ही ये है कि आपकी ज़िंदगी की समस्याओं को हल करें, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत, खुशगवार बनाएं और आपके हर दिन को एक मोटिवेशनल टर्नआउट दें। तो लिसनर्स, जैसा कि आपको और मुझे साथ में हो चुके हैं एक घंटा कंप्लीट, तो एक बार फिर से बताती चलती हूँ उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। हो सकता है कि वो किसी काम में मसरूफ़ हों, बिजी हों या फिर कहीं ना कहीं फंसे हुए हों, तो उन तमाम तर लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि आप किस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। जी तो लिसनर्स, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, तो आप इस नंबर के जरिए से हमसे रابطہ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू ट्यून कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्यूरिंग ड्राइविंग आप हमें सुनना चाहते हैं, सो उसके लिए आप फजा टैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि

क्योंकि हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन मकसद ही ये है कि आपके दिन को खूबसूरत और यादगार बनाया जाए। जी तो लिसनर, जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हम अपनी रेसिपी की, यानी कि आज के मेन कोर्स रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई बूटी की। सो अगर एक अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी हो और उसके साथ कोई सीजनिंग ना हो, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सॉस ना हो, तो खाने का मज़ा थोड़ा सा कम, यानी कि फीका पड़ जाता है। तो लिसनर्स, इसे आप सभी के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग इमली और पुदीने की चटनी। क्योंकि आप कुछ भी खा ले, कुछ भी ट्राई कर ले, लेकिन खाने का टेस्ट तभी आता है कि जब साथ में अच्छी सीजनिंग हो, अच्छी सॉस हो। सो इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं, आप सभी से शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए इमली, थोड़ी सी आप उसको अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो कर रख लें। इसके साथ साथ हमें चाहिए मिंट लीव्स, आप थोड़े से ले सकते हैं, जितने आपको ज़रूरत है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हरी मिर्च एक अदद और नमक और ज़ीरा हस्बे ज़रूरत। चलिए लिसनर्स, इसके प्रोसीजर की जानिब बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इमली को अच्छी तरह से पुदीने, हरी मिर्च, नमक और ज़ीरे में डालकर ब्लेंड कर ली। इसको इस तरह से ब्लेंड करें कि वो बिल्कुल पीस जाए। सेकेंडली आपने करना क्या है कि जब आपकी मलाई बोटी रेडी हो जाए, तो आपने मलाई बोटी को इस मज़ेदार सी चटनी के साथ नोश फरमाना है। एंड आई एम श्योर आपको फील होगा कि आपका टेस्ट डबल हो गया है और मज़ीद इन्हेंस हो गया। वो कहा जाता है ना कि कुछ चीज़ों के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो ठीक इसी तरह से जब आप चिकन मलाई बूटी के साथ ये मज़ेदार सी इमली की चटनी ट्राई करेंगे, तो यू मस्ट से कि दे आर परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर।

सो लिसनर्स, आई थिंक खाने पीने की काफ़ी बातचीत हो गई है और अब तमाम तर फीमेल्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं कि क्यों ना कुछ ब्यूटी टिप्स की तरफ भी बढ़ा जाए। तो आज के दिन में सेल्फ केयर से रिलेटेड आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसी मज़ेदार ऑर्गेनिक टिप्स जो कि ना सिर्फ आपकी स्किन को अच्छा बना देंगी बल्कि इसको मज़ीद इम्प्रूव कर देंगी और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी भी डस्ट पोल्यूशन, इन सब की वजह से होता है ना कि आपकी मेरी हम सभी की स्किन जो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, ये उसको नेचुरली प्रोटेक्ट करेगी और हील भी करेगी। वो वेरी फेमस लाइन है ना कि लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आप जितने भी कॉन्फिडेंट दिखें, आप जितना भी बोल्ड बन जाएं, लेकिन अगर आपकी स्किन, आपकी टेक्सचर उस तरह से खूबसूरत प्यारा नहीं है तो एट दिस मोमेंट देर इज़ अ सम पॉइंट जहाँ पे आपको फील होगा कि यू लूज़ कॉन्फिडेंस। सो डैट्स वाई इन्वेस्ट इन योर स्किन। और अगर आप स्किन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो बेस्ट वे यही है कि आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों की सबसे खासियत ये होती है कि ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती और आपको प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू दी अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। वैसे भी आजकल मार्केट में काफ़ी सारे केमिकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो आपकी स्किन को हील करते हैं, नेचुरली अच्छा करते हैं, लेकिन मैं हमेशा से यही प्रेफर करती हूँ, मैं खुद पे ये यूज़ करती हूँ। सो इसीलिए मैं अपनी तमाम कटिवा से ये शेयर करती हूँ कि वो भी इसी को यूज़ करें, क्योंकि ऑर्गेनिक थिंग्स इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड।

सो एक रॉयल ल्यूमिनस ग्लो तभी आपको मिलता है जब आपकी आंखें प्यारी और सुंदर दिखती हैं। सो इसीलिए आज आप सभी के लिए एक लाई हूँ ऐसी रेमेडी जो आपकी आंखों को खूबसूरत सुंदर बना देंगी। सो इसके लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए बादाम का तेल, सेकेंडली रोज वाटर एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट एलोवेरा जेल। अच्छा, अब आपने क्या करना है इन तीनों चीज़ों को, यानी कि बादाम का तेल, उसके बाद रोज़ वाटर और उसके बाद एलोवेरा जेल, तीनों इंग्रेडिएंट्स का आपने एक एक चम्मच ले लेना है, उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है। मिक्स करने के बाद रात को सोने से पहले अपने रिंग फिंगर की मदद से इसको अपनी आईज के इर्द गिर्द जेंटली आपने लगा देना है, यानी कि आपने बिल्कुल भी रब नहीं करना, कोई मसाज नहीं करना, कोई हार्शली आपने इसको अपने फेस पर पुट नहीं करना, बल्कि बिल्कुल सॉफ्टली आराम आराम से स्लोली आपने इसको अपने फेस पर लगा देना है।

तो लिसनर्स, आप नेक्स्ट हम अपनी फेस पैक रेमेडी की तरफ चलते हैं। सो ये एक फेस टोनर है, इसको आप जब अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। सो एक किसी भी फेस को, अपने चेहरे को खूबसूरत दिलकश बनाने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपकी आंखें सुंदर दिखनी चाहिए, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो और सॉफ्ट हो, एंड देन द लास्ट थिंग इज़ के आपके ओपन पोर्स ना नज़र आ रहे हों और स्किन टाइट हो। होता ना बाजू का, कुछ लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है और एजेड लगती है, तो इसी के लिए ये रेमेडी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। सो सिंपल से दो इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ करने हैं। आपने यूज़ करना है ग्रीन टी, ग्रीन टी एक कप आपने ले लेनी है। उसके बाद उसको आपने ठंडा करके रख लेना है, एंड देन सेकेंडली लेमन जूस। सो ये दो इंग्रेडिएंट्स जो बेसिक से हैं, लेकिन ये मैजिक का काम करेंगे। जब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, यू विल सी के आपकी स्किन किस कदर टाइट हो रही है। अब यूज़ किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, ग्रीन टी को और लेमन जूस को एक स्प्रे बॉटल में डाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, दिन में 2-3 times या फिर सुबह उठकर या फिर रात को सोने से पहले आप इसको अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। इट रिमूव्स एक्सेस ऑयल एंड गिव यू अ मैट फ्रेश लुक।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्यूटी रेमेडीज अच्छी लगी होंगी। तो जितने भी मेरी फीमेल्स इस वक्त मुझे सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए मैं इतना कहूँगी कि आपकी स्किन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। अगर आपका फेस, आपकी स्किन डल लगेगी, बुझी बुझी लगेगी, तो इट डजेंट मैटर कि यू वेयर एन एक्सपेंसिव क्लॉथ, यू वेयर समथिंग एक्सपेंसिव, या फिर यू लिव इन एक्सपेंसिव लाइफ। सो सबसे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फेस पर, अपनी स्किन पर। और स्किन इन्वेस्टमेंट द बेस्ट थिंग यही है कि आप अपनी स्किन को टाइम दें और इसी तरह की ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनी स्किन पर अप्लाई करें, ना कि फेक केमिकल प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्किन को नेचुरली हील करती हैं बल्कि सन से भी प्रोटेक्शन देती हैं। सो ज़रूर ट्राई करिएगा इन रेमेडीज़ को और मुझे अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको ये रेमेडीज़ कैसी लगी। फीडबैक किस तरह से बताना है आपने? 01157100971 इस नंबर के जरिए से मुझसे आप शेयर करिए कि आपको ये ऑर्गेनिक टिप्स कैसी लगी। और ऐसी मजीद मजे मजे की ऑर्गेनिक टिप्स जानने के लिए radiofaza.com.uk को विजिट करते रहें। तो लिसनर्स, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए जुड़े रहिए, बंधे रहिए हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट सैनब फातिमा। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और इस वक्त मुझे ट्यून कर रहे होंगे। तो आपको बताती चलती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से मुझसे अपने पैगाम शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक बता सकते हैं और मुझे आपके फीडबैक का हमेशा से इंतजार रहता है। एंड आई एम ऑलवेज लविंग टू रीड ऑल दीज कॉमेंट डैट यू पोस्ट ऑन माई शो।

जी तो लिसनर्स, कभी आपके साथ आपकी लाइफ में कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आया जहां आपको लगे कि सब काफ़ी अच्छा, सब स्मूथ और अच्छे से चल रहा है, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाए जो आउट ऑफ द नो वे, यानी कि आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा अलग हो। सिंपली अगर देखा जाए कि सिंपली आप जी रहे हैं, पूरा दिन चल रहा है, सब परफेक्ट हो रहा है, लेकिन वो जो एक चीज़ जो इम्परफेक्ट हो जाए बीच में, आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। होता है ना ऐसा, लेकिन एट दिस मोमेंट तो मैं आप सभी से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इसी मोमेंट पर हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमारी लाइफ में 100% से 50% चीज़ें जो नहीं है वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होती हैं, हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग होती हैं, अकॉर्डिंग टू अस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन 50% चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारा फोकस और कॉन्सेंट्रेट उन 1 या 2% चीज़ों की जानब होता है जो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होती, और हम बार बार सोचते रहते हैं, उन्हीं को माइंड में घुमाते रहते हैं कि अच्छा ये काम हुआ है तो क्यों ऐसे हुआ, और हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ। सो जस्ट वैसे ही अभी सोचते सोचते मेरे माइंड में एक चीज़ आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर से भी शेयर की जाए कि

ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारी चॉइस के मुताबिक हो, हमारी अकॉर्डिंग हो। बाज़ औक़ात समटाइम्स बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होती, बट इट्स ओके, इट्स लाइफ, क्योंकि ये होता है, चलता है, क्योंकि ये दुनिया है। जी तो लिसनर्स, बस इतना कहूँगी कि इन्जॉय करें, खुश रहें, दूसरों को भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें, और कोशिश करें कि एक पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट आप क्रिएट करें, और आपकी प्रेजेंस किसी के लिए भी नेगेटिविटी का सबब ना बने। और अगर कभी ऐसा हो कि सडनली कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर दे, आपको परेशान कर दे, या आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स आने लगें, सो आप उन थाट्स को ज़रा सा साइड पर कर दें और एक मिनट के लिए पॉज लें, आँखें बंद करें और सोचें कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, सो डोंट वेस्ट योर टाइम विद आर्ग्यूमेंट्स एंड डोंट वेस्ट योर टाइम विद नेगेटिविटी।

सी द लिसनर्स, इसी बात पर चलिए सुनते हैं ये एक अच्छा सा खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि मैं आई फील लाइक के काफ़ी ज़्यादा बोर रही हूँ, और कहीं ऐसा ना हो कि लिसनर्स मेरी आवाज़ सुन सुनकर बोर हो जाएं। सो मुझे आपका ख्याल है, तो इसी के चलते चलते सुनते हैं कोई मज़ेदार सा ट्रैक, और इस ट्रैक के उस पार फिर से होगी आपसे मुलाकात और गपशप का सिलसिला जारी करेंगे। वेल लिसनर्स, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कि आपको किस तरह के ट्रैक्स पसंद हैं या आप क्या सुनना चाहते हैं। आपकी भी राय का पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि उन ट्रैक्स को शो में ज़रूर शामिल करूँ जो मेरे लिसनर्स को पसंद हैं।

वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस खूबसूरत से मैशअप को एंजॉय किया होगा। चलिए तो चलते हैं आज जरा थोड़ी बातचीत करते हैं उन डीवास की, यानी कि अच्छा तो लिसनर्स आप सभी की नज़र में डीवा कौन होता है? एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत ही ज़्यादा ग्रूम हो, फैशनेबल हो, मॉडर्न हो, लेकिन फॉर मी अ डीवा इज़ अ गर्ल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, और उसके अंदर दुनिया के लिए कुछ नया करने का, कुछ नया देखने का और सीखने का जज्बा हो।

तो लिसनर्स, आप सभी के लिए लाई हूँ आज एक ऐसी ही खूबसूरत दीवा की कहानी जिनकी जिंदगी से ना सिर्फ आपको मोटिवेशन मिलेगी बल्कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो लिसनर, जैसा कि अगर हम बात करें यूके की तारीख की यानी कि हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई ऐसी अजीम औरतें गुजरी हैं जिन्होंने दुनिया को बदला, जिन्होंने दुनिया को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, नया मोटिव दिया और नया गोल दिया। जैसा कि आज हमने शो में बात भी की, हमारा गोल ऑफ द डे भी यही कह रहा था कि जिंदगी में आपका कोई गोल होना चाहिए, कोई एम्बिशन होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह हमारी आज की दीवा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसे सोसाइटी ने अमीर घराने में देखा, जिसके पास ऐशो इशरत हो, उनसे सब कुछ छोड़ देना और फिर उसके बाद एक ऐसी ज़िंदगी का स्टार्टअप लेना जो कि हार्डली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इस मोमेंट पे आकर स्टॉप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, क्या ज़रूरत है कि हम एक्स्ट्रा मेहनत करें, एक्स्ट्रा स्ट्रगल करें। लेकिन हमारी आज की दीवा ने इस चीज़ को बिल्कुल भी गौर नहीं किया और अंत तक मेहनत की और दुनिया को एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया।

अच्छा, हमारी आज की रीवा का कहना कुछ यूं था कि आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू दिस, आई नेवर गिव अ टुक एनी एक्सक्यूज। यानी कि वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे तरह से गुजारें कि जहाँ उनको ऐशो इशरत मिले, आराम मिले, सुकून मिले, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई उजाला ना हो, कोई मकसद ना हो, कोई मिशन ना हो। सो उन्होंने इस चीज़ को अपना एम्बिशन बनाया, अपना मकसद बनाया कि वो दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगी। ठीक है लिसनर्स, आज द डीवा डायलॉग के इस सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिन की, एक ऐसी डीवा जिन्होंने सिर्फ एक लैम्प उठाया और दुनिया को अंधेरे में उम्मीद की रोशनी दिखाई। ठीक तो लिसनर्स, चलिए देखते हैं उनका इनक्रेडिबल सा सफर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 को इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई, लेकिन उनका ताल्लुक बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से था। वो एक अमीर और एक हाई क्लास ब्रिटिश घराने से रहती थी। उनके वालिद एक जमींदार थे। जब फ्लोरेंस 16 बरस की हुई तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अल्लाह ने इंसानियत की खिदमत के लिए बनाया है। अच्छा, जब ये बात उन्होंने अपने घर में की, अपनी फैमिली से की, तो उनके घर वालों ने उनके इस फैसले को सख्त मुखालफत की, तनकीद की, और उन्हें काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन जर्मनी और फ्रांस से नर्सिंग की ट्रेनिंग मुकम्मल की उन्होंने और अपने इस मिशन में डटी रही। वो अपने इस फॉर्म से, अपने इस रेजोल्यूशन से बिल्कुल भी एक स्टेप पीछे नहीं हुई।

इसी सब चीजों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए 1853 में जब चेयरमैन वार शुरू हुई तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल 38 नर्सिस की टीम के साथ तुर्की के ब्रिटिश हॉस्पिटल में आ पहुंची। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में सफाई ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं। तो फ्लोरेंस ने क्या किया, फ्लोरेंस ने दिन रात काम करके सफाई के निज़ाम को बेटर किया। ये वो दौर था जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, आपके पास हैवी इक्विपमेंट्स नहीं होते। उस दौर में फ्लोरेंस लैम्प की मदद से, लैम्प का सहारा लेकर दिन रात मरीजों की देखभाल करती थी। इनकी इसी खिदमत को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज भी लोग उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से बुलाते हैं। अगर बात की जाए फ्लोरेंस की इंटरनेशनल सर्विसेज की, तो जंग के बाद फ्लोरेंस ने दुनिया को पहली बार एक नर्सिंग स्कूल कायम करके दिया। जो कि बेसिकली लंदन के एसटी थॉमस हॉस्पिटल में शुरू की गई। उन्होंने दुनिया को बताया कि नर्सिंग कोई खिदमत नहीं बल्कि एक साइंस है और इसीलिए एक प्रॉपर एजुकेशन इसके लिए ज़रूरी है। अगर आप देखें तो ओल्ड सोसाइटी में नर्सिस को वो वैल्यू, वो वकार नहीं दिया जाता था, लेकिन अगर हम आज की बात करें जिसके 2026 में, तो आज नर्सिस हॉस्पिटल की ना सिर्फ एक ज़रूरत है बल्कि एक मॉडर्न ज़रूरत भी है। उन्हें उनकी खिदमात के ऊपर ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो कि यूके का सबसे बड़ा शाही इनाम है, इससे नवाजा गया, क्योंकि वो इसी काबिल थी कि उन्होंने जिस तरह से अपने अच्छे हालात देखते हुए इतनी मेहनत और कोशिश की। तो जी लिसनर्स, ये थी हमारी आज की खूबसूरत सी आइकॉनिक पर्सनालिटी फ्लोरेंस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पर्सनालिटी अच्छी लगी होंगी। इनकी ज़िंदगी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इनकी ज़िंदगी से क्या एक चीज़ सीखने को मिली, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे इनकी ज़िंदगी से ये चीज़ सीखने को मिली कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि जिसमें आपको बड़ा काम भी करना पड़ता है, छोटा भी। अब अगर हम फ्लोरेंस को देखें तो वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती थी, एक ऐसे घर से बिलोंग करती थी कि जहाँ उन्हें हर एक चीज़ प्लेट में रख कर मिल जाती थी, बट स्टिल दे चूज़ फाइट ओवर साइलेंस। वो कहा जाता है ना कि उन्होंने चूज़ की हर्डल्स को, डिफ़िकल्टीज़ को, जस्ट टू सर्व ह्यूमैनिटी। सो आप सभी भी ऐसे ही बने कि आप दूसरों के लिए मेहनत करने का जज्बा खुद के अंदर पैदा करें। मुझे इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी लगी और आई होप लिसनर्स आपको भी ये बायोपिक अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारे शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन शो अभी हमारा ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह और आपकी ज़िंदगी अभी बाकी है। सो कोशिश करिए कि बाकी के टाइम को खूबसूरत बनाएं, आज के इस दिन को खूबसूरत बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े उन तमाम तर लोगों का जिनकी ज़िंदगी आपसे कनेक्टेड हैं, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दिए। तब तक के लिए मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फ़ातिमा को दें इजाज़त। साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए, सलासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
12: You are staying. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM।

कठिनाई हो मैं जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाए दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो, सुनते पे हो अपने दिलानी आवाज, दिलानी आवाज
7: 97.1।
8: It's music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

याद रखें, हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तनहा राह हिदायत पर चलें। आपकी गुफ्तगू चांदी है और आपकी खामोशी सोना है।

याद रखिएगा कि नसीब बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं।

दोस्तों, वक्त वो खजाना है जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। हम अक्सर कहते हैं कल से शुरू करेंगे, मगर वो कल कभी नहीं आता। कामयाब लोग वो होते हैं जो आज को बेहतर बनाते हैं, तो आज से अभी से अपने वक्त को कीमती बनाएं। हमारी माशरती जिम्मेदारी यह है कि हम सब इस माशरे का हिस्सा हैं और माशरा हमसे बनता है। अगर हम सच बोलें, अगर हम सफाई का ख्याल करें, अगर हम एक दूसरे का एहतराम करें, तो यही छोटे छोटे अमल एक बेहतरीन माशरा बना देते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, किसी को मदद की जरूरत हो तो आगे बढ़ें, क्योंकि नेकी कभी ज़ाय नहीं की जाती। अपने दिन के अख्तिताम पर कभी खुद से सवाल करें, आज मैंने क्या अच्छा किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, क्या मैं कल से बेहतर हूँ। यही सवाल हमें बेहतर इंसान बनाते हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

California lately. I'm always on my own.

एक खूबसूरत हकीकत यह है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो दूसरों से अपना मुवाजना करना छोड़ दें, क्योंकि हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ होती है, हर किसी का वक़्त अलग होता है और हर एक का इम्तिहान भी जुदा होता है। एक छोटा सा अमल कीजिए, आज रात सोने से पहले तीन चीज़ें ज़रूर याद करें जिन पर आप शुक्र अदा कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपका दिल हल्का हो गया और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई है।

याद रखिएगा कि सब्र कमज़ोरी नहीं बल्कि ये वो ताकत है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। जो चीज़ आपके लिए लिखी जा चुकी है वो आप तक पहुंच कर ही रहेगी, और जो आपके लिए नहीं है वो लाख कोशिश के बावजूद नहीं मिलेगी। तो फिर क्यों ना हम बेचैनी के बजाय सब्र को इख्तियार करें।

दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने की हिम्मत दे, अच्छा सोचने का शऊर दे, दूसरों के लिए आसानी बनने की तौफीक दे और हमारी जिंदगियों को खैर और बरकत से भर दे। मैं था आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा हैदर और आप सुन रहे थे रेडियो फ़ज़ा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

और सलामती की ढेर सारी दुआओं के साथ मैं हूँ फाखरा मिर्ज़ा। मोहब्बतों से गुंथे और यकीन से बंधे रिश्तों के साथ एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हुए बस यही कहेंगे कि मैं तो अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, मैं तो अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक खूबसूरत से दिन का आगाज सुबह की पहली किरण के साथ हुआ और फिर देखते ही देखते सूरज ने इतनी किरणें फैलाई, अपनी रोशनी अपनी गर्माहट और ये नर्म गर्म सी धूप ने पूरे नॉटिंगम को अपनी आहोश में लिया और हमें एहसास दिलाया कि जिंदगी यहीं कहीं हमारे आसपास मौजूद है और मौजूद रहती है। सो आप सबको आज का दिन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मुबारक हो आज के दिन की, और इसके साथ हमारा आज का शो और मुझसे पहले जो हमारे प्रेजेंटर शो कर रहे थे तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत खूबसूरत आवाज़ और लब लहजे के साथ उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, इंटरटेनमेंट का कोई भी कोना उन्होंने अपने हाथों से सिरकने नहीं दिया।

तो जी हमारे स्टूडियो का नंबर 0115710971 पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए www.radiofaza.org.uk। और रब्ता क्यों ज़रूरी है ये आप ही जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और आज के दौर में तो बच्चा बच्चा जानता है कि रब्ता क्यों ज़रूरी है। मीडिया के दौर के हम लोग हैं, हम तो नहीं थे लेकिन हमें बना दिया गया, लेकिन आने वाली जनरेशन जो है वो मीडिया के दौर की है, सो उनके साथ उसी दौर के मुताबिक बात करनी होती है क्योंकि वो उसी लैंग्वेज को समझते हैं। और मीडिया के दौर के सभी तकाजों को पूरा करने वाला शख्स ही आज की जनरेशन के साथ चल सकेगा। जी हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमें अलिफ पे मीडिया की पता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें बटन दबाने, मैसेज करना, वॉइस मैसेज भेजना, इतना तो हमें पता होना चाहिए। और अगर किसी को पता नहीं तो बच्चों को चाहिए कि अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को इस चीज से जरूर वाकिफ करवाएं, जरूर उनको सिखाएं और थोड़ी सी कोशिश अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बड़ों के साथ ज़रूर किया करें। कुछ चीज़ें छोटी मोटी सी उनको ज़रूर सिखाएं ताकि वो भी हमारे साथ चल सकें। सो जी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM से, और उसके साथ कुछ खट्टे मीठे से गीत, प्यारे प्यारे से गीत होंगे, और गीत म्यूजिक ये अगर ना हो तो क्या होता है, प्रोग्राम फीका सा हो जाता है। प्यारा सा गीत आप सबके नाम करती हूँ, यकीनन अच्छा लगेगा उन सब लोगों के लिए जो कि इस खामोशी से मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे।

और जी गीत आपने सुना, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना और मेरे जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना, एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही डीप सी इसकी शायरी है। लेकिन जब भी आप इस पर गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितना खूबसूरत एक मैसेज है, कितना खूबसूरत पैगाम, और लिखने वाले ने क्या उम्दा शायरी लिखी है।

जी, आज बात करेंगे हम रिश्तों की वैल्यू क्यों है और रिश्ते क्यों जरूरी है। जैसा कि हमने पहले कहा कि आज के दौर का जो इंसान है, मीडिया के दौर का इंसान है, और आज का इंसान रिश्तों से ज़्यादा फ़ोन के अंदर खोया रहता है। उसके सभी रिश्ते फ़ोन के अंदर हैं। और उसके इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं, उसे उनकी ज़रूरत क्यों महसूस नहीं होती? हर शख्स अपने फ़ोन को लेकर अलग किसी जगह पर क्यों बैठना चाहता है? और ये जो उसके इर्द गिर्द जीते जागते लोग फिर रहे होते हैं, उसे उनकी ज़रूरत महसूस क्यों नहीं होती? ऐसे बहुत सारे सवाल। स्टेट यूनियन रेडियो फजा 97.1 FM। सो आप भी कुछ कहना चाहें तो जरूर शामिल हूँ। और शामिल होने के लिए 01157100971 हमारा स्टूडियो का नंबर,

जी सामी रेडियो बाजार 97.1 FM और एक प्यारा सा गीत आपकी समाधा तक पहुंचाने के लिए, और आपको बताते चलें कि ये जी आवाज थी लता मंगेशकर जी की।

हमारे लिरिक्स ये दिल और उनकी निगाहों के साए। और समय पिछले प्रोग्राम को जब से हमने शुरू किया अगर उसमें कहीं पर आपको कुछ म्यूजिक सुनने को नहीं मिला सो उसके लिए माजरत खा है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती हैं ऐसी कि आप तो अपनी तरफ से पूरी डिलीवरी दे रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि सिलसिले टूट जाते हैं।

0: और जी ये दिल तुम बिन क्यों नहीं लगता, इतनी खूबसूरत सी रिक्वेस्ट। और लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में,
1: वो तेरी याद में
0: हजारों रंग के नजारे बन गए। खूबसूरत गीत, ओल्ड इज गोल्ड।
1: लिखे जो
0: कभी कभी दिल चाह रहा होता है ना कि पुराने गीतों को सुना जाए, पुरानी यादों को ताजा किया जाए। और जिन लोगों ने इन फिल्मों को देखा, इन गीतों को सुना, यकीन उनको तो बहुत ही अच्छे लगते होंगे। यकीन कीजिए कि कुछ भी नया नहीं है, वही पुराने फैशन, वही गीतों को तोड़ मोड़ के नया बनाया जाता है, वही रंगों का खेल है, वही तितलियों के परों पर लिखी कहानियां हैं, और वही कोसो कजा के सातों रंग। जिंदगी पहले भी खूबसूरत थी, जिंदगी आज भी खूबसूरत है, लेकिन आज रिश्ते कुछ बुझे बुझे से दिखाई देते हैं, और जिंदगी उतनी खूबसूरत नहीं जितने पहले हुआ करती थी, या शायद पहले से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसमें वो दिलकशी, वो जान जासबियत कुछ भी नहीं है।

और जी लिखे जो हद तुझे वो तेरी याद में। सो जी माशरती रबतों में कमी की वजूहत क्या है, और अपने बड़े बुजुर्गों की बात ना मानना, उनको वैल्यू ना देना, उन्हें साथ ना रखना, उन्हें बोझ समझना, ये सब

0: सितारे बन गए।
1: और जी ये प्यारा सा गीत सुनने की फरमाइश हमें अली ने की थी, जो कि डर्बी से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और बहुत शुक्रिया अली आपका, डर्बी से सुनते हैं हमेशा और अपने मैसेजेस हम तक जरूर पहुंचाते हैं। अली हैदर आप ही सुन रहे हैं हमें। और बहुत शुक्रिया अली हैदर, आपका मैसेज मिला। अलीना सुन रही हैं, अलीना आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और जी फहीम सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा, सो बुजुर्गों के बारे में आपने भी कुछ लिख के भेजा, सो उसे भी शामिल करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहें तो जरूर 01157100097 पर जरूर दस्तक दिया करें, अपने दिल की बात जरूर किया करें। जो कुछ आप अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, उसका इजहार करना बहुत जरूरी होता है।

जी लव मैशअप सुने आपने रेडियो फजा 97.1 एफएम से आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज एक खूबसूरत दिन हमें मिला और सूरज की पहली किरण ने नॉटिंघम के चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरी, अपनी नर्म गर्म किरणें बिखेर कर हमें एहसास दिलाया कि ज़िंदगी यही हमारे आसपास मौजूद है और ज़िंदगी हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती है, शायद हम ही उसे खोज नहीं पाते। और माशरे में हर शख्स तन्हा होता जा रहा है। आप देखें इन दिनों में आप लोगों से मिलेंगे, लोगों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं रही, लोग एक दूसरे से भागते हैं, एक दूसरे से पीछा छुड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हर शख्स को हर शख्स की ज़रूरत भी है। शायर ने क्या खूब कहा था कि दम निकल जाए तो कंधों पर उठा लेते हैं लोग, दम निकले तो कंधों पर उठाने की ज़रूरत पड़ती है। किसी की रुस्ती हो तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे त्यौहार जो हैं वो लोगों की मौजूदगी के बगैर कुछ फीके से होते हैं। ढोलकी नाइट्स पे बहुत सारी लड़कियों की ज़रूरत होती है, कोई ढोलकी बजाए, कोई तालियां बजाए, कोई गीत गाए, कोई डांस करे। बारात के साथ हमें बहुत सारे गाड़ियों वाले चाहिए होते हैं, जो ढेर सारी गाड़ियां हों, लक्ज़री गाड़ियां हों, और बारात जब जाए तो पता चले जी कि किसी की बारात है। किसी के घर में जब कोई बच्चा होता है तो बहुत दिल चाह रहा होता है कि सब लोग मुबारक दें, हमें अप्रिशिएट करें। किसी बच्ची की एंगेजमेंट हो, बच्चे की शादी, कुछ भी हो, हमें लोगों की ज़रूरत होती है। और ये वो टाइम होता है जहाँ पर हमें अपने बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत होती है, और इन लम्हात में हम अपने बुज़ुर्गों के पास दौड़ के जाते हैं कि उनसे पूछा जाए निकाह कैसे होता है, बच्चे के हथने कैसे करवाएं, बच्चे के बाल कैसे कटवाएं, बच्चे को दूध कैसे पिलाएं। रुख्सती के वक्त हमें बुज़ुर्गों की ज़रूरत होती है, बारात की आमद पर हमें बहुत ज़्यादा अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की ज़रूरत होती है। और फिर जब किसी का कोई दुनिया से रुख्सत हो रहा होता है तो उस वक्त देखिए कि हमें मौलवी हजरात की, अपने जो बड़े होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तो जब इन सब चीज़ों में हमें अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की ज़रूरत है, तो फिर घरों में रहते हुए हम अपने बुज़ुर्गों को क्यों इग्नोर करते हैं, क्यों उनको डिलीट करना चाह रहे होते हैं अपनी ज़िंदगियों से, क्यों हमें वो अपने लिए बोझ लगने लगते हैं। सो बुज़ुर्गों की घरों में इज्जत ना करना और शादी के बाद बीवियों का माँ बाप से अलग रहने का फैसला कबूल कर लेना, ये क्या करता है कि मुसलसल लड़के को एक तन्हाई के जज्बे और कैफियत से गुजारता रहता है, जहाँ पर लड़की तो खुश होगी या शायद वो भी इतनी ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन लड़का ज़्यादा जज्बाती दबाव का शिकार हो जाता है। समीन कहते हैं कि अकेला रहना खुद मुख्तारी है या जिम्मेदारियों से फरार, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ भी आती है कि क्या माओं ने अपनी बेटियों की तरबियत करना छोड़ दी, उनको घरदारी, घर के कामकाज, उठने बैठने का सलीका, रिश्तों में रहने के जो तौर तरीके होते हैं, क्या वो बताने छोड़ दिए। लेकिन हमारे इस सवाल का जवाब कई जगहों पर हमें मिलता है कि माओं ने बच्चियों की तरबियत करना बिल्कुल छोड़ दी, जिसकी वजह से एक बच्ची जब शादी के लायक होती है, उसका रिश्ता वगैरह तय होता है, वो इतनी खौफजदा होती है अगले रिश्तों से, इतना डरी होती है, तो उस वक्त वो लड़के को ये कहती है कि जी मुझे अकेला रहना है, मुझे तुम्हारे रिश्तों के साथ नहीं रहना, क्योंकि मैं कोप नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उसी बच्ची की अगर अच्छी सी तरबियत हो, उसे उसकी तालीम के साथ साथ खरीदारी भी सिखाई जाए, तो 100% मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि बच्चियाँ बड़ी आराम के साथ कूद जाएं उस घर में और सबके साथ रहना शुरू कर दें।
سو ایسی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ہمارے بزرگ بہت تنہا ہوئے ہیں, گھروں میں تنہا پڑے رہتے ہیں, انہیں کوئی بالکل بھی کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی بالکل بھی ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتا. کہیں ہالیڈیز پر جاتے ہیں تو اپنے بزرگوں کو ایک بوجھ سمجھ کر گھروں میں اکیلا چھوڑ کے جاتے ہیں, اولڈ ہومس کی طرف جا رہے ہیں بڑے لوگ, اور بزرگ گھر میں ہوں اور اگر کوئی ینگ کپل آ جائے, ینگسٹر اکٹھے ہو جائیں, تو بزرگ ٹوٹلی اگنور ہو جاتے ہیں. سو یہ سب کیوں ہو رہا ہے معاشرے میں, یہ سب چیزیں کیا ہیں, کیوں ہیں, جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. سو جی ایسی بہت ساری باتیں آپ ہی سوچ رہے ہوں گے, میں بھی سوچتی ہوں, اور یقیناً ہر شخص ہی سوچتا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہی لوگ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, رہنا سہنا, کھانا پینا, ہم رنگوں والے لوگ ہیں جو رنگوں سے کھیلتے ہیں, رشتوں سے محبتیں کرتے ہیں, رشتوں کو پالتے ہیں اور رشتوں کے بغیر ادھورے ہیں. ہم سب وہ لوگ ہیں جو رشتوں کی ڈوریاں باندھتے باندھتے اتنی مضبوط کر جاتے ہیں کہ کسی کے لیے اسے کھولنا اور یا توڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. سوچیے گا, غور کیجیے گا.

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

जी वेलकम बैक टू रेडियो फजा 97.1 FM और तू ही मेरी शब है, तू ही है मेरी सुबह। एक प्यारा सा गीत बहुत अरसे के बाद सुना और यकीनन ये गीत आप सब लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। आप सबको खुश आमीद कहते हुए रेडियो फजा का नंबर बताए देते हैं। डॉक्टर चौधरी आप सुन रहे हमें और बहुत शुक्रिया शामिल होने का। मिस्टर सेठी आपका मैसेज मिला, बहुत शुक्रिया शामिल हुए। और आज की सुबह आपको बहुत अच्छी लगी, मौसम के बदलने का आपने कहा कि मौसम बदला तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे एनर्जी भी वापस आई है। जी हाँ ऐसा ही हो रहा है सभी के साथ, सभी को ऐसा लग रहा है कि दिन का जो ये लंबा दुरानिया होता है इसे देख के हम सबको एहसास होता है कि नहीं हम जिंदा लोग हैं। वरना सर्दियों में तो सुबह आँख खुलती थी तो अंधेरा और ऐसा महसूस होता ऐसा कि जैसे हमने पूरा दिन और रात अंधेरे ही में गुजारी। बहुत शुक्रिया मिस्टर सेठी साहब।

और जी प्यारा सा गीत आपने सुना पार चनंदे दिसे कुली यार दी, एक खूबसूरत गीत। जी हाँ, बहुत ही डीप से इसके लिरिक्स हैं। और आप से रेडियो 97.1 FM से। सो जी बताइए आप लोग किस मूड में हैं, क्या कर रहे हैं और आज का दिन कैसे गुजारने का इरादा किया हुआ है आपने। यकीनन बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स पे हैं, काम में हैं और बच्चे स्कूलों से घरों की तरफ जी हाँ जा चुके होंगे। और जो लोग दिन भर अपनी ड्यूटी पर थे वो भी घड़ी को बार बार देख रहे होंगे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो अपने ऑफिस से निकल कर सफर में होंगे। ट्रैफिक टाइम है सो नाटिंगम में बहुत सारी जगहों पर रोड वर्क्स हो रहे होते हैं और नाटिंगम की सड़कें बहुत ज़्यादा देखी हैं कि उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब भी है। और उसकी वजह हमें यही लगी कि बारिशें यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा होती हैं, इस वजह से सड़कें जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। बहरहाल ये कि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है और कोशिश किया करें कि वक्त से थोड़ा पहले निकला करें ताकि अपनी मंजिल पर, अपने घर, अपने ऑफिस, अपने काम पर वक्त पर पहुंच सकें, बल्कि अपनी अपॉइंटमेंट्स पर। और हदीका कियानी भी कमाल खूबसूरती से गाती हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं। और हदीका कियानी जी, उनकी वालदा बहुत अरसा पहले उनकी वफात हो चुकी थी और हदीका कियानी ने जब 8 अक्टूबर का सिलसिला आया था मुजफ्फराबाद में तो वहाँ पर उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था और अडॉप्शन में उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थी और सिंगल माँ या बाप को बच्चा देना कानूनी तौर पर ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो उनका कहना था कि उन्हें बड़ी मुश्किल पेश आई और बहुत मुश्किल से उन्होंने इस बच्चे को हासिल किया। बच्चा बहुत ही छोटा सा था, बहुत खूबसूरत था और आज वो बच्चा आई थिंक 16-17 ईयर ओल्ड है। बहुत से लोग इस चीज़ पर सोशल मीडिया पे इशू उठाते हैं कि हदीका कियानी का वो बच्चा जो है वो अब उनके लिए नामहरम है, लेकिन हदीका जी का कहना है कि मैंने एक माँ बनकर उसको पाला और आज मैं ये कैसे सोच लूँ कि वो मेरे लिए नामहरम है। सो हदीका कियानी जी की शादी, कहीं पर उनका रिश्ता हुआ फिर टूट गया, उनकी शादी ना हो सकी। सो उन्होंने क्या किया कि सूफी गीत गाए, बहुत सारा चैरिटी वर्क करती हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ लेकर चल रही हैं। समझ में कभी कभी सोचती हूँ कि शादी ही कोई एंड नहीं है, वर्ल्ड का, दुनिया का कोई एंड नहीं है कि अगर शादी ना हुई तो बस ज़िंदगी वहीं पर रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई अच्छा साथी ना मिले, कदरदान ना मिले तो शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करें कि अच्छा, कदरदान, फैमिली वाला, वैल्यूज़ वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, वो चाहे औरत हो या मर्द हो, जो फैमिली की वैल्यूज़ को समझ सके, रिश्तों को तवज्जो दे सके, रिश्तों को प्यार मोहब्बत दे सके। आपके घरों में आकर घर का एक एक दिन का अलग करने वाले लोगों से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि उस बेफैजे संगी को लो, बेहतर यार अकेले, है ना। मियां मोहम्मद बख्श का ही कलाम का एक हिस्सा है कि उस बेफैजे संगी को लो, बेहतर यार अकेले। सो ये प्यारा सा गीत हदीका कियानी जी की आवाज़ में ट्रिब्यूट पेश करते हुए उन्हीं के सुनने के लिए, जी हाँ, स्टे ट्यून इन रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM।

और जी जान जाएगी और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है ना। इंसान का एंड यही कि चलो जो भी हुआ जान ही जाएगी, एक जान चली गई तो क्या होगा, है ना, किसको क्या फर्क पड़ता है। खूबसूरत बात है ना। इंसान जब ऐसे होता है ना मायूस, तो फिर वो यही सोचता है कि क्या हो गया, मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, किसको फर्क पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर रिश्ते मोहब्बत करने वाले हों, प्यार करने वाले हों, तो यकीनन जाने वाला भी सोचता है कि नहीं, जान जाएगी तो बहुत सुख को बहुत फर्क पड़ेगा, है ना ये बात। और इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग भी जानते होंगे। समय जो टॉपिक जिस पे मैं बात करी थी, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो हैं, उनको क्यों हम इग्नोर करते जा रहे हैं, मैंने एक हदीस पढ़ी जो कि आप सबके साथ आज के शो में शेयर कर रही हूँ कि एक हदीस मुबारक है कि एक शख्स जन्नत में जाएगा, वहाँ वो उदास होगा। अल्लाह इस शख्स से पूछेगा कि तुम क्यों उदास हो, तो अर्ज करेगा कि या अल्लाह मेरे अपने किधर हैं। इसके घर वाले दोस्त, अल्लाह फरमाएगा कि वो जहन्नुम में चले गए हैं। वो शख्स कहेगा कि या अल्लाह इनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, या अल्लाह इनको माफ़ कर दे। तो फिर क्या होगा कि अल्लाह ताला उनको माफ़ करके जहन्नुम से निकाल के जन्नत में ले आएगा। वो शख्स अपनों को देखकर बहुत खुश होगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसके दाएँ बाएँ उसके अपने रिश्ते हैं, वो शख्स बहुत ही खुशकिस्मत है। सो इन सब चीज़ों को देखकर पढ़कर इंसान सोचता है कि उसके अपने, उसके प्यारे उसके लिए कितने ज़रूरी हैं। और आजकल हम अपने बुज़ुर्गों को, अपने प्यारों को अपने से अलग करने के कितने प्लान करते हैं। सोशल मीडिया की बात हमने जैसे कि पहले की कि सोशल मीडिया पर इन दिनों में बहुत ज़्यादा हमने ऐसी वीडियोस देखी कि जहाँ पर माँ को मारा गया, घसीटा गया, उसके बाल खींचे गए और उसको घर से निकाल दिया, उसे ओल्ड होम में फेंक दिया गया। ओल्ड होम्स की बहुत सारी स्टोरीज जो थी लाइव उन खवातीन की बताई जाती हैं जो कि उन्हें बहाने से वहाँ पर भेज कर मुड़ के उनका किसी के पता ही नहीं किया। और फिर बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनके माँ बाप नहीं थे, ओल्ड एज में हैं, उनके बहन भाइयों ने वहाँ पर उनको छोड़ा। सो आज भी वो लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनका कोई अपना आएगा और उन्हें वापस ले जाएगा। कई बार यकीनन मुश्किलात होती होंगी जहाँ पर किसी का एक ही बच्चा है और वो अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पा रहा, तो ऐसे भी हालात होते हैं कि लोगों को उन जगहों पे भेजना पड़ता है। लेकिन मेजॉरिटी उन लोगों की थी कि जो बच्चे थे, उनकी बीवियाँ, आगे उनके बच्चे थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी माँ को ओल्ड होम में भेजा या अपने वालिद को। तो सोचने की बात है कि कैसे दिल करता है किसी का ऐसे करने को, अपने बड़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने वालदेन के साथ, जो एक छोटे से लोथड़े को रातों को जाग जाग कर एक एक कतरा पानी का देकर, दूध का देकर, एक एक लफ्ज उसको बोलना सिखा कर, उसको पकड़कर चलना सिखाते हैं, दुनिया की दौड़ में शामिल करते हैं, फिर उनकी शादी ब्याह तालीम सब कुछ करने के बाद वो अनवांटेड कैसे हो जाते हैं। मैं अक्सर इस चीज़ को सोचकर बहुत परेशान होती हूँ, क्योंकि सामिन प्रैक्टिकली लाइफ में मैं इस बात को करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं कि कभी कभी अपना हवाला देना पड़ता है। सो मेरी जब शादी हुई तो कुछ 6 महीने के बाद मेरे जो ससुर थे उनको फालिज हुआ और वो बेड पे चले गए। मैं उस वक्त छोटी सी थी, बहुत पतली कमज़ोर सी, लेकिन मैंने कई बार अपने ससुर को अपने हाथों से खाना खिलाया और कभी घर वाले घर नहीं होते थे उनके साथ बैठती, वो जब बोलते थे तो उनकी बात समझ नहीं आती थी, वो इशारों से कुछ कहते थे लेकिन समझ नहीं आती थी। उनकी एक साइड जो थी, उनका एक हाथ पूरा और एक बाजू, उनकी टांग जो थी वो फालिज़दा थी। सुबह उनको तैयार करके कुर्सी पे बिठाया जाता था,
तो ऐसा लगता था जैसे कि वो अभी चल पड़ेंगे, लेकिन उनके दिमाग का एक हिस्सा जो था वो नकारा हो चुका था। तो यकीन कीजिए कि मैं कई बार अपने जो मेरे

बाहर के नज़ारे, ग्रीनरी, थोड़ा सा लोगों को देखें। हालांकि वो बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, कोई इशारा नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी आंख देख रही थी। सो कई बार ऐसा हुआ कि मैं उनको बाहर लेके जाती थी। घर में हम किसी शादी ब्याह में जाते, हम उन्हें अपने साथ लेके जाते थे। उनकी व्हील चेयर होती थी शादी में, उनको हम अपने साथ टेबल पर बिठाते, उनको खाना खिलाते। अगर किसी की डेथ हो जाती अपने किसी करीबी की, तो हम वहाँ पर भी उनको साथ लेके जाया करते थे। और मैं इस बात पर बहुत ही फख्र महसूस करती हूँ कि मेरे दोनों जो ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने अपने बाप की बहुत हिदमत की। मेरी सास जो थे, उन्होंने बहुत हिदमत की अपने हस्बैंड की। और 3-3.5 साल तक वो इसी हालत में रहे और फिर अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आज भी उनकी कमी को बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ। और बुज़ुर्ग ना होने का एक जो घर में सन्नाटा और खामोशी है, मैं उसे दिल से महसूस करती हूँ। तो आज भी मैं किसी के घर में किसी बुज़ुर्ग को देखती हूँ जो ज़्यादा चल नहीं सकते, तो मेरा उनको यही मशवरा होगा कि आप उनको शादी ब्याह में साथ लेके जाया करें। कहीं हॉलीडेज जाते हैं, आप उनके लिए होटल बुक करवाएं, होटल का एक कमरा उनके लिए बुक करवाएं, उनकी व्हील चेयर आपके साथ हो, आप उनको व्हील चेयर में घुमाएं, अपने जिस्म का, अपनी फैमिली का एक हिस्सा उनको समझें। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी वज़न होने की वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाती थी। हम जब भी कहीं पर हॉलीडेज जाते, वो साथ हमारे जाती थी, उनकी व्हील चेयर होती थी हमारे साथ। उनकी व्हील चेयर को कभी बच्चे चला रहे, कभी मैं चला रही, और कभी मेरे हस्बैंड। सो हमने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि उन्हें घर में छोड़ के जाएं, किसी के घर फेंक के जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अहम थी, बहुत ज़रूरी थी, बहुत ख़ास थी। ये वो औरतें होती हैं जो बड़े इंतहाब के बाद हमें अपने घरों में ब्याह के लाती हैं, अपना खूबसूरत नौजवान बेटा हमारे निकाह में, उसके निकाह में हमें लाती हैं। तो कैसे हो सकता है कि हम उन लोगों को टोटली इग्नोर करके अपना अलग घर बसाएं, सेल्फिश बन जाएं और उनको देखने के भी रवादार ना हो? ऐसा क्यों है? कहां पर तरबियत में कमी होती जा रही है? आज की माँ अपनी बच्ची की तरबियत में क्यों गफलत बरत रही है? क्यों उसको ये नहीं समझा रही कि रिश्तों को कैसे पालना है, कैसे साथ लेके चलना है? ऐसे बहुत सारे सवाल यकीनन आप सबके जहनों में भी होंगे, और हर सवाल का जवाब यकीनन हमारे पास मौजूद होता है, और हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और इन सब सवालों के जवाब उसी वक्त हमें मिलेंगे जब हम अपने बच्चों की तरबियत, चाहे वो बेटी हो या बेटा, हमें उनकी तरबियत पर पूरी तरह से तवज्जो देनी है। उन्हें एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी और अच्छा क्या बनाना है, मोहब्बत करने वाला इंसान बनाना है। यकीनन बहुत सारे लोग मेरी बातें सुनकर बोर हो रहे होंगे, या उन्हें इन बातों से कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि ये एक पुरानी सोच है, एक पुराने वक्तों की बात है। यकीन कीजिए कि आज का इंसान भी उसी तरह सोता है, जागता है, खाता है, पीता है। आज भी औरत माँ बन रही है, आज भी वो किसी के निकाह में या किसी अट्रैक्शन जो है एक औरत और मर्द की, वो आज भी मौजूद है। कायनात आज भी पूरी तरह से उसी तरह से बेदार है। सर्दियाँ आती हैं, हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, धूप छांव, सभी कुछ कुदरत अपना काम उसी तरह से कर रही है। आज भी जिंदगी वैसी ही चल रही है जैसे आज से 100 साल पहले थी। इंसान वैसा ही है, उसका दिल दिमाग सब कुछ वैसा ही है। आज भी मुकर्रर वक्त पर हमारी डेथ हो जाती है, तो फिर हमारी सोचें क्यों बदली? सोचने की बात है, और सोचिएगा इस चीज पर। बहुत से सोच के दरवाजे खोलने की कोशिश हमेशा करती हूँ, और यकीनन मेरी बात किसी ना किसी के दिल में जरूर उतरेगी। अपना ख्याल रखें, अपने रिश्तों का, ये बहुत जरूरी और अहम है। और अगले गीत की जानिब चलते हैं जी। एक प्यारा सा गीत आपका मुंतजर है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि हम सब का मुंतजर है।

और जी तुम भी मुझसे प्यार कर लो, ये प्यारा सा गीत सुना आपने। एक अली आपने इसकी फरमाइश की थी, बहुत शुक्रिया अलीना, आप सुन रही हैं हमें और तहे दिल से शुक्रिया। आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा और आपका कहना है जी कि इस टॉपिक को जब भी मैं सुनती हूँ, जहाँ पर भी सुनती हूँ, और मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपका कहना है कि इस चीज़ से मेरे पेरेंट्स गुजर रहे हैं और बेटी होने की हैसियत से मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं करती हूँ, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर बेटियाँ अगर ज़्यादा कर जाएं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया लेना। और फिज़ा आप सुन रही हैं, फिज़ा और आपके साथ नायला भी हैं, सो आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया, बहुत शुक्रिया। अली आप डरबी से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपका मैसेज दोबारा से आया। और उन सबको शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने खामोशी से हमें सुना जी और हमारे टॉपिक को यकीन पसंद किया होगा, है ना।

0: मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।
1: और जी बोल कफारा क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान नफरत नहीं कर सकता किसी से, अगर वो मोहब्बत नहीं करता तो नफरत भी नहीं कर सकता। हर किसी की मजबूरियां होती हैं, हालात होते हैं। सो हर किसी की मजबूरियों को, हालात को समझना चाहिए। अगर आप किसी की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बतों के दावे करते हैं, तो फिर मोहब्बतें करने वाले तो एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं, एक दूसरे का दुख सुख में साथ देते हैं। उनके अपनों से मोहब्बत करना इस बात की दलील होती है कि आप जिससे इश्क और मोहब्बत के दावे कर रहे हैं उसको फुल फ्लैज, पूरा एक प्लेटर की तरह उसको आप समेटते हैं, लेते हैं। उसके साथ जुड़े हुए सारे रिश्तों को भी आप वही अहमियत, वही प्यार देते हैं। तो उस प्यार को मैं प्यार मानती हूँ। जो पूरे कुंभे में से किसी एक से मोहब्बत करता है और बाकी सबको इग्नोर, नफरत करना उनसे, उनको बस इधर उधर कर देना, तो ऐसी मोहब्बतें किस काम की। जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिएगा कि जिससे हम मोहब्बत के दावे करते हैं, जिसे हम कहते हैं आई लव यू, मोहब्बत है, इश्क है, हम आपके बगैर जी नहीं सकते, जब हम उसे अपने उनके प्यारों से अलग करके रखेंगे तो ये मोहब्बतें क्या पायदार होंगी? क्या ये मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी? क्या ये मोहब्बतें फल फूल देंगी? अगर ऐसा हो सकता है तो कीजिए आज से मोहब्बतें। और अगर दिल से आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं, उससे उसकी अकीदत एहतराम है उसका दिल में, तो फिर आप उसके सब रिश्तों के साथ मोहब्बत करेंगे, उनको इज्जत देंगे, एहतराम देंगे, तो यकीन कीजिए ये एक ऐसी जंजीर आप उस शख्स के पाँव में डालेंगे कि वो आज़ाद होने की कोशिश में बार बार उस जंजीर में बंधता चला जाएगा।

जी इश्क मुर्शिद ड्रामा बहुत ही हिट हुआ और उसका ये खूबसूरत सा गीत बहुत ही प्यारा सा था, यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक को वाइंड करते हुए आप सबसे इजाजत लेने का वक्त हुआ। जाते हुए बस इतनी सी बात कहूंगी कि अपनी पूरी जिंदगी औलाद के लिए वक्फ करने के बाद भी हम बुढ़ापे में खुद को तन्हा महसूस क्यों करने लगे हैं, क्यों हम अकेले हो रहे हैं, क्यों तन्हा महसूस कर रहे हैं और क्यों बगैर कि हम जैसे कि डरे सहमे से बुजुर्ग हैं, तन्हाई का शिकार होकर ये बुजुर्ग क्यों इतने परेशान हैं, उन्हें क्यों लग रहा है कि हमारे बच्चे हमें ओल्ड होम में फेंक देंगे, ऐसा क्यों है, ये फिक्रें ये परेशानियां क्यों हैं, ये सवाल आप सबके जहनों में छोड़े जा रही हूँ। और एक और सवाल, सवाल नहीं बल्कि एक बात, कि जिस शख्स से आप मोहब्बत कर रहे हैं, जिसके बगैर आपकी एक रात नहीं गुजरती, जिस शख्स के बगैर आपका दिल चाह रहा होता है कि घर के सब दरवाजे खोल के खिड़कियां खोल के उस शख्स से अगर माँ बाप शादी नहीं करवा रहे तो हम यहाँ से भाग जाते हैं, उस शख्स के साथ जुड़े हुए रिश्ते उनसे नफरत क्यों की जा रही है, उनके बुजुर्गों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है और क्यों ये बात रखी जाती है कि हम आपके वालदेन के साथ नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आप सबके जहनों में छोड़े जा रही हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिश्तों का ख्याल रखिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत सी जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कीजिए पूरे पैकेज के साथ।

0: to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम, या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
0: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
5: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼
6: 97.1।
4: ਦ ਰੇਡੀਓ ਦੈਟ ਕੀਪਸ ਯੂ ਮੂਵਿੰਗ।

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम।
1: के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
10: Radio Bazaar 97.1 FM.

0: You are listening 97.1 FM.
1: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

The radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुन दे पे हो अपने दिलानी आवाज़,
7: फजा 97.1।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 011-599-8484 या 077-021-0793।
5: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299।
8: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You're listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकु सुकु
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल में।

आपके दिल की धड़कन, रेडियो फजा 97.1 FM।

radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस।
6: इट्स कमर्शियल टाइम।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में जियो, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
14: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
13: सलासा ट्यूशन सेंटर?
14: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच सिनेंटनडेल NG2 4LG में है।
13: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
14: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
13: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
15: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए, सलासा ट्यूशन सेंटर 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
16: You are listening 97.1 FM.
17: You are staying. We are playing.
18: Fazan 97.1 FM.
19: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
20: 97.1 FM।
16: You are listening 97.1 FM.